0: फ्लाइट बहुत लेट हो गई। खान ले बर्गर ले लिए
1: ना जी, अप्पा ते गर्मा गर्म रोटी खावांगे।
0: माले नखरे ना करो, मेथों रात दे 3 बजे रोटियां नहीं पकदियां।
1: ओहो तुहानू नहीं कष्ट देना, अप्पा चलना है समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स जो 24 घंटे खुले हुंदे ने।
2: समोसा हाउस इंडियन कुजीन, ब्रेकफास्ट विच गर्मा गर्म परौठे, लंच एंड डिनर विच पूरियां, छोले भटूरे, फिश टिक्का, चाइनीज इंडियन फूड, हर प्रकार दी मिठाइयां अते केटरिंग भी करदे ने। इंडियन कॉफी अते कुल्लर स्पेशल चाय भी इन्हां कोलों मिलदी है। हर प्रकार दे खाने वाली शानदार रेस्टोरेंट समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स, ओपन 24 आवर्स, यूनिट 2154-43-10-104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कॉल 403-461-6161।
3: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदियां ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान, ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनां नाल भरिया है इन्हां दा शोरूम। अज ही इन्हां दे शोरूम ते पुज्जो, 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515, 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
4: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
5: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा, कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
4: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
5: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां, हफ्ते दे 7 दिन, सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
4: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
5: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू,
4: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड,
5: चौथी लोकेशन 606 सिटीस्केप,
4: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
5: छेवीं लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
4: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
5: 403-835-2222।
6: सलाम नमस्ते सतिकार आदाब याली मदर, मैं आपका होस्ट जलाल आपकी केक कितन नाजिर, आप सब सुन रहे हैं देख रहे हैं कॉफी जलाल ओनली ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 FM। आज यहां KWJ स्पॉटलाइट का जो अपना सेगमेंट है जो है एवरी वीक, अगर जब भी KWJ जो स्पॉटलाइट का जो इवेंट होता है, जो अपना सेगमेंट होता है, उसमें या तो कोई नया कॉन्सर्ट आने वाला है, या तो कोई नया आर्टिस्ट है कैलगरी में, या तो हम किसी बैंड के बारे में बात करते हैं, तो आज भी ऐसा ही कुछ चक्कर है। आज भी हमारे पास एक बहुत ही सुपर डुपर इवेंट होने जा रहा है कैलगरी में जून की 13 तारीख को, और उसके बैंड मेंबर्स यहां पर मौजूद है, इंक्लूडिंग वन ऑफ द सिंगर और उनके जो ऑर्गेनाइजर हैं जय चौधरी, वो भी यहां पर मौजूद हैं। तो अगर आपने इसलिए आज जो है अपना लाइव म्यूजिक होगा, तो आई वुड सजेस्ट कि गो ऑन फेसबुक, सर्च फॉर माय नेम जलाल इस्माइल आरक, तो आपका जो आज का जो शो है आज आप जो देख भी सकेंगे, और आज के जो गाने होंगे आप सबको बहुत मजा आएगा। और ये शो क्यों होने जा रहा है, ऑफकोर्स आपको जैसे पता है कि तकरीबन 3 हफ्ते पहले वन ऑफ द लेजेंड आशा जी, सो शी पास्ड अवे, और उन्हीं के तो हैं, उन्हीं को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है ऑन जून द 13th विद द लाइव बैंड। यस विद द लाइव बैंड। सो इंशाल्लाह अगर आपने जो भी टिकट चाहिए, ऑफ कोर्स यू कैन कॉल एनीवन, यू नो ऑफ कोर्स जो विल बी गिविंग यू लॉट्स ऑफ नंबर्स एंड एवरीथिंग, यू कैन और यू कैन मैसेज हियर ऑन द फेसबुक का जो कमेंट सेक्शन है, इफ यू नीड एनी टिकट, अदरवाइज यू कैन कॉल मी 5878994786। तो मेरे साथ जो मेरे राइट पर है वन ऑफ माई वेरी वेरी गुड फ्रेंड, वन ऑफ द रियली नाइस सिंगर एंड द ब्यूटिफुल ह्यूमन बींग, निकिता कैसी हो, गुड टू सी यू अगेन।
7: मैं ठीक हूँ जलाल जी, थैंक यू सो मच।
6: नहीं अपना यू नो आई शुड से वेलकम बैक टू द इंडस्ट्री अगेन, आई नो यू वर, हमने शो किया था उसके तो उसको 2-3 साल हो गए,
7: हमने गए आई थिंक 3 शोज किए, और लास्ट शो था वो 2 साल पहले किया।
6: सो इट्स बीन अ व्हाइल नाउ, गुड टू हैव यू बैक।
7: या थैंक यू सो मच।
6: या यू वेलकम। और उनके लेफ्ट पर है माय गुड फ्रेंड जय चौधरी। जय भाई कैसे हैं आप?
8: बस मैं ठीक हूँ।
6: हाँ बस ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन एंड थैंक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ सुपर डुपर शो।
8: थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस हियर।
6: और उनके जो

0: क्या बात है निकिता वाह वाह वाह मशाल जी भाई आपका हाथ बहुत ही सेड है आपको जो अपना ये जो चल रहा है साथ में कीबोर्ड आप भी कितने साल से बजा रहे हो
1: मैं हो गया ऑलमोस्ट 30 इयर्स
0: 30 इयर्स से बजा रहे हो क्या बात है माशाल्लाह
1: बस ये मेरा कुछ नहीं है जिनका नाम लिया मैंने किशोर जी आशा जी
0: जी जी जी जी
1: है आशीर्वाद है और कुछ नहीं
0: जी जी
2: उन्हीं से सीखा है
1: इंस्पिरेशन जिसको बोलते हैं वही लोग
0: जी जी जी जी नो दर्शकों तो आपको ये कहाँ से सीखा आपने इंडिया में तो जब सीखा
1: हाँ इंडिया में काफी गुरु थे मेरे पास तो उनका आशीर्वाद भी मैं बोलना चाहूंगा तो उनसे बस सीखा और लेकिन मैं जो बोलना चाहूंगा कि अपने अंदर भी एक इंटरेस्ट होना चाहिए
0: ऑफ कोर्स
1: गुरु एक हद तक आपको गाइड कर पाएंगे उसके बाद आपके अंदर अगर वो इंटरेस्ट नहीं है तो
0: यस
1: एक जगह में जाके आप रुक जाओगे उसमें ऐसे मुझे लगता है
0: जी बिल्कुल बिल्कुल अगर आपके अंदर वो लगन नहीं है yes. तो यू कैन नॉट गो एनी राइट या चाहे कोई कितना भी पैसा फेंक दे
1: एग्जैक्टली
0: इट वोंट वर्क अंदर जो है लगन होनी चाहिए exactly. मंजी जी आप जब भी रवि साहब के घर पर गए थे
3: yes.
0: थोड़ा हमको ये बताओ क्या था वहाँ पे क्या आपको लगा क्या आपने किया वहाँ पर
3: उनके जो डोर विंडोज
0: जी
3: और उनका म्यूजिक लाइब्रेरी वो सब बना तो खुले दर्शन हम रफी साहब के हम करते रहे
0: क्या बात
3: बातें
0: है?
3: भी होती थी बहुत
0: क्या बात है
3: तो मजाक भी होता था
0: जी जी जी जी जी
3: तो ये तो सौभाग्य है हमारा कि
0: बिल्कुल बिल्कुल
3: ऐसा टाइम मिल गया वहाँ ऐसे लोग मिल गए वहाँ
0: ऐसे लोग मिल गए
1: कितने हम्बल थे वो भी बताइए
3: हम्बल तो इतने थे कि आपको कान को साथ में लाकर सुनना पड़ता है
0: अच्छा अच्छा ऐसे बोलते थे
3: सॉफ्ट बोलते थे और माइक के आगे तो वो लायन थे
0: यस बिल्कुल
3: तो बहुत कम बोलते थे वो भी मगर घर में तो ठीक है वो घर में भी ऐसा ही बोलते थे
0: जी
3: आवाज उनके घर में कोई ऊंची नहीं कर सकता बोलता ही नहीं था ऊंचा भी
0: जी जी जी क्या बात है आई थिंक यू आर वन ऑफ द लकी पर्सन कि आपको जो उसको देखने का मौका मिला बात करने का मौका मिला सुनने का मौका मिला हमें तो कभी ऐसा कभी हुआ नहीं लेकिन आई थिंक वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव यू हियर बहुत अच्छा लगा कि
3: रफी साहब खयाम साहब
0: यस यस यस
3: कल्याण जी नंद जी
0: यस
3: सोनी कोमी ये सब
0: ये तो सर लेजेंड्स हैं
3: हाँ इनको सबको मिल चुके हैं
0: देखिये उन्होंने क्या म्यूजिक बनाया था सालों पहले
3: बिल्कुल
0: वो अभी भी जिंदा और हमें इतना ही अच्छा लगता है जितना उस वक्त अच्छा लगता है बल्कि हम और अभी इंजॉय कर
3: बिल्कुल वो बचपन से ही हमारे ब्लड में आई ये
0: जी
3: और उसकी वजह से ही हम ये सैक्सोफोन को उठाया
0: जी जी जी

0: क्या बात है यार माशाल्लाह निकिता अमेजिंग मजा आ गया आज तो आई थिंक जस्ट यू नो फीलिंग
1: लाइक और अच्छे सुनने के लिए
0: आना पड़ेगा ऑफ कोर्स आपको वहां
2: मतलब ये मैं कहना चाहती थी कि ये तो हो गए
1: एक ट्रेलर है
0: ये तो ट्रेलर है
2: और फास्ट गाने भी
1: बिल्कुल और म्यूजिशियन होंगे पूरा बड़ा साउंड होगा
0: यस यस यस यस यस नहीं तो आपने जो है जिसको टिकट लेनी प्लीज यू कैन जो है मैसेज ऑन दिस आप जो कमेंट्स में लिख सकते हैं और यू कैन जस्ट जो है अपना कॉल मी टेक्स्ट मी 5878994786 5878994786 अगेन हम जो है आशा जी को एक बहुत ही सुपर डुपर ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं विद द लाइव बैंड सुनो करियोकी इट्स अ लाइव बैंड विद ऑल द म्यूजिशियन इंक्लूडिंग मजीद जी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने मोहम्मद रफी के साथ प्ले किया है
3: yeah.
0: उनके घर पर जाके प्ले किए थे इनके यहाँ एक स्पेशल हम जो है सेशन करेंगे फॉर 5 मिनट्स के उन्होंने क्या मोहम्मद रफी साहब से क्या देखा क्या सीखा और थोड़ी उनकी जो है अपना जो पर्सनल जो बातें हैं विद द मोहम्मद रफी साहब तो वो हम वेरी वेरी स्पेशल होगा मेरा इनका और फिर इनके साथ जो है ड्रमर भी है और जो तबले पर साइरस भी हैं

0: क्या बात है निखिल वाह वाह जय भाई जी भाई वाह वाह वाह आपका जो बीच में जो टच आता था बड़ा मजा आता था उसमें वाह वाह वाह तो ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग रेडी फॉर द जून 13 शो जो कि इटरनल जो लाइक विल बी ट्रिब्यूटिंग टू आशा जी वन एंड ओनली आशा भोसले जो कि 12 अप्रैल को इस दुनिया से उन्होंने रुखसती की और ऑफ कोर्स शी उनको कौन नहीं जानता जितने म्यूजिक लवर्स हैं बॉलीवुड के अराउंड द वर्ल्ड सो एवरीवन नोज हर शी वाज वन ऑफ द लेजेंड तो वी विल आई थिंक इट्स अवर ऑनर टू जो है ट्रिब्यूट टू जो है लेजेंड जैसी आशा जी हैं निकिता आपका आशा जी का क्या मानती है उनको क्या लगता है क्या आप ऑफ कोर्स यू बीन सिंगिंग फॉर अ व्हाइल
1: या काफी साल से मैं गा रही हूँ और लाइक फॉर मी वो ही इंस्पिरेशन थे जब लाइक आई वाज लाइक बोर्न इन 1990 बट दे वर ऑलरेडी लाइक देयर लीजेंस लाइक बिफोर 70s एंड एवरीथिंग बट म्यूजिक पहले से सीखा है तो जो भी सीखा है इंडियन क्लासिकल है इवन बॉलीवुड है वोकल है उनकी गजल्स है जो है
0: yes,
1: तो वो सब उन्हीं से सीखा है लता जी आशा जी उनको कॉपी करते थे जब छोटे थे तब कि ऐसे कैसे गाया जाए छोटी छोटी मुर्कियां उनकी जो अदाएं थी वो सब देख देख के सीखे है और उन्हीं से इंस्पिरेशन मिला फिर पता चला फैमिली को कि अच्छा ये भी गा सकते हैं तो चलो म्यूजिकल म्यूजिक ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो nice. वो हमेशा से थे और उनका जाना बहुत अफेक्ट हुआ लता जी का जाना भी आशा जी का जाना भी तो इट्स वेरी क्लोज टू हार्ट
0: इन्होंने जो है इतने अवार्ड जीते हैं आई थिंक आई जस्ट नेम फ्यू ऑफ देम जिसमें नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी है BFJA अवार्ड्स भी है फिर महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से इनको जो है फिल्म अवार्ड्स मिले हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स इंक्लूडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिर फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर द बेस्ट फीमेल सिंगर 7 times कभी हमने सुना नहीं फिर उनको जो है ग्रैमी अवार्ड्स के लिए उनके जो 2000 में नॉमिनेशन भी तो जो है इनको मिला प्लस इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इनको दिया गया फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट फिर इनको जो पद्म भूषण भी उनको मिला जो सेकेंड हाइस्ट सिविल ऑनर अवार्ड फॉर इंडियन लाइक फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट प्लस उनका नाम जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है 2011 में जो भी उन्होंने इनको जो है अपना क्या बोलते एक्नोलेज किया था जब भी इनकी डेथ हुई जय भाई चाहे वो बॉलीवुड न्यूज हो चाहे इंग्लिश चैनल हो सब ने वो न्यूज कवर जो है कवर की थी
2: होना भी चाहिए
0: एज अ रिस्पेक्ट एब्सोल्युटली आई थिंक इट वाज वेरी नाइस स्पेशली जो बीबीसी आई थिंक दैट इज अ लॉ बिकॉज वहां पर इतना वो है हमारी कम्युनिटी वहां पर इतनी ज्यादा है
2: जो मैं मानता हूँ शायद मैक्सिमम म्यूजिक लवर ये मेरे बातों के साथ एग्री करेंगे कि आशा जी जैसे वर्सेटाइल सिंगर शायद दुनिया में और कोई
0: नहीं
2: जिस टाइप के गाने उन्होंने गाए ना वो क्लासिकल में भी इतना माहिर थे अगर कोई कैबरे हो या पॉप हो या रॉक हो कोई भी गाना उनको दे
0: उसमें भी वो अपना शो स्टॉप
2: दिखाया तो इसीलिए उसका कोई कंपटीशन है किसी के साथ नहीं कर
0: पाऊंगा चाहे वो रंगीला ही गाना कितने मशहूर रंगीले चाहे कोई स्लो सॉन्ग या तो फिर जो उमरा जान की गजल्स हो She was everywhere.
2: और उनका क्लासिकल भी इतने खूब है कुछ ऐसे अनकॉमन गाने भी है
0: जी
2: कभी आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप भी कभी सुनिएगा साथी रे भूल ना जाना मेरा क्या बात है
0: और तो उस दिन आप आएंगे 13 जून को आपको सब वो सुनने के लिए मिलेगा चाहे अपना गजल हो चाहे स्लो सॉन्ग हो रोमांटिक हो चाहे तो फिर वो अपना फास्ट म्यूजिक हो सब मिलेगा विद द लाइव बैंड यस विद द लाइव बैंड इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि लाइव बैंड और द जो टिकट्स आर ओनली 25 फॉर द जनरल टिकट 35 फॉर रिजर्व और फिर $50 फॉर द VIP और ऑफकोर्स यू कैन गेट प्लस अप टू स्नैक्स चाय टी एंड स्नैक्स इंक्लूडिंग इन द ऑल द ऑल लाइक ऑल द टिकट प्राइस एंड इंशाल्लाह आई विल

0: be there as well. The music band will be there, and it's at New Canadian, जो हॉल है वहाँ पर ये होने जा रहा है. And if you need any information, you can call me. Free parking, that's very important. Yes, you can call me at 587-899-4786, or you can call any of our जो है जो हमारे team member, including Lata ji, Shehnaz Moor ji, Zahir Jalal, और जो है सुहेल राजा, and of course जय चौधरी यहाँ पर मौजूद. या तो आप निकिता को फोन करें, मंजी जो को भी आप जो या anyone you can call, just be there for this amazing show. इसलिए ये show पे ऐसा बार बार नहीं आएगा. और हमारे जो इसमें जो live singers होंगे, जहीर जलाल, निकिता यहाँ पर मौजूद है, प्लस द कविता और फिर परमिंदा मरवाहा. इनको मैंने बहुत टाइम से सुना नहीं है, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट.
1: परमिंदा जी बहुत चूजी है, वो
0: बहुत चूजी है, यस,
1: इसीलिए वो हर शो में उनको नहीं दिखाई देते. जब हमने शो प्लान किया, फिर हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि परमिंदा जी आपको गाना है इसमें. और परमिंदा जी खुद भी आशा जी का बहुत बड़ा फैन
0: है,
1: एक ही बार में बोलने के बाद उन्होंने एग्री किया, बोलते नहीं 100% मैं गाऊंगा. उनका भी कुछ गाने रखे, खास करके लता जी, आशा जी के साथ कुछ डुएट और कुछ सोलोस भी होंगे उनका.
0: ओह दिस अमेजिंग अमेजिंग, कैन नॉट वेट फॉर जून द 13th. गेट योर टिकट्स. नेक्स्ट
1: नेक्स्ट
0: एक कोई अपना फास्ट नंबर कर लो,
1: उनका भी होगा कुछ. दो लफ्जों की कहानी.
0: ओह यस यस यस, मजा आ जाएगा.
1: डाउन करके थोड़ा

0: क्या बात है यार ये भाई आप योर बिगेस्ट फैन नाउ मैन क्या बात है आप जो बीच में जो जो टच डालते हो ना माशाल्लाह जबरदस्त सुपर्ब सुपर्ब यार आप बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी हो आई कैन टेल है कि नहीं निकिता
1: बहुत आई मीन मैंने तो उनके साथ किया उनको पता है कि कैसे पूरा अरेंज करना है कैसे पूरा प्रोडक्शन आउटपुट लाना है सामने ही इज द बेस्ट
0: या आई थिंक विल बी
2: मैं बस कोशिश करता हूं कि देखिए एक टीम गेम है टीम वर्क है अगर सिर्फ क्रीज में मैं बैटिंग करूंगा और किसी को नहीं बैट करने देंगे ऐसा नहीं चलता है तो ये टीम गेम है टीम वर्क है तो मैं चाहता हूं सबके साथ मिलके हर सबके अंदर क्वालिटी होती है उसको निकालना पड़ता है एक्सट्रैक्ट करना होता है तो वही मेरा काम है और कुछ नहीं
0: आई थिंक और जो ये काम में एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है अदरवाइज अगर अगर आप बेसुरा जाएगा एवरीथिंग गोज
3: एग्जैक्ट कीबोर्ड इज द इंजन
0: एग्जैक्टली अच्छा मंजीत मेरा एक रिक्वेस्ट है

0: आप आशा जी का कोई भी गाना फुल फुल वॉल्यूम में बजा
1: ओके ओके
0: हाँ फुल वॉल्यूम
1: आपको चाहिए
0: मजा आ जाएगा
1: स्केल दे

0: क्या बात है मंजीत जी, आई एम श्योर कि जो लोग आएंगे उनके लिए ट्रीट होगी।
1: सुर लगे
0: या मंजीत जी,
2: ये भी मुझे
0: यस प्लीज
2: चाहिए था। मंजीत जी भी उसमें उस दिन कुछ गाने इंस्ट्रूमेंटल प्ले करेंगे।
0: अच्छा, वाओ, आई थिंक दिस इज अमेजिंग।
3: वो गजल कर देंगे वो,
2: बिल्कुल
3: सलोना सा,
2: सलोना सा,
3: आशा,
2: यस।
0: तो जो वहां पर आएंगे सुनने वाले देखने, जो वहां पर देखेंगे आके, आई थिंक दे विल बी अमेज। उनके लिए ट्रीट होगी कि मंजीत जी को ऐसा लाइव सुने। और जो है सैक्सोफोन ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, ये एक बंदा पूरे माहौल को ले सकता है। इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है ये, माशाल्लाह। अल्लाह ने आपको बहुत बहुत स्किल दी सर। यस सर, वाकई वाकई माशाल्लाह।
2: में जमाने में सैक्सोफोन का यूजेस बहुत काफी ज्यादा होते थे
0: जी।
2: आज के म्यूजिक में सैक्सोफोन थोड़ा कम सुना, मतलब सुनने को देखते मिलते, लेकिन उस टाइम काफी सैक्सोफोन के यूज होते थे। किशोर जी, लता जी, आशा जी,
0: या वो
3: चाहते हैं कि लोग सुनने वाले हों। ऐसे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो डायरेक्टरों ने बनाए हैं
0: जी,
3: वो ऐसे ही पड़े हैं। हम चाहते हैं कि सुनने वाला हो तो हम सुना सकते हैं।
0: बिल्कुल
3: भी उनकी चॉइस का सैक्सोफोन सॉन्ग
0: जी। इसलिए ऐसे क्या, जब भी जो अपना का कपिल शर्मा शो जो देखते हैं, वहाँ कभी सिंगर आता है उसमें सैक्सोफोन होता ही बेटर था। वो कौन है आपको पता? वो हमेशा वही शो में होते हैं।
3: उसका नाम है राज सोधा कभी कभी आता
0: है। हाँ, अच्छा,
3: देखो ना, वो जैसे ये गाने लता जी के अजीर उठकर, जब उसमें सैक्सो का प्ले बेदर्दी बालमा,
2: वो आरडी बर्मन के म्यूजिशियन थे।
0: यस,
2: राज सोधा जी, उन्होंने मैक्सिमम गाने में शायद आपको उनका प्लेबैक, मतलब जो प्लेबैक में उनका ही है।
0: इसलिए आजकल जो नई दुनिया है, नई इंस्ट्रूमेंट है, सारा ये कंप्यूटराइज हो गया है, वो हर कुछ आवाज निकल जाती है। तो जो इसकी जो वैल्यू है, यू नो,

0: it's not easy to play. तो इसलिए आई थिंक जो नई जनरेशन इसको ज्यादा कैचअप नहीं कर रही है लेकिन होपफुली आई थिंक दिस विल क्रिएट सम मोर बज इन द सिटी कि माशाल्लाह आप जो है यहाँ पर मौजूद हो रहा है देन यू हमने आपका रिकॉर्ड किया खास आई विल पोस्टिंग स्पेशल पोस्ट के वो कम एंड वॉच दिस लेजेंड हाँ तो आप तो हमारे लेजेंड है माशाल्लाह
1: यूट्यूब पे काफी फॉलोअर्स हैं
0: सी
1: तो बहुत लोग इनको सुनते
0: wow.
1: प्यार करते हैं इनके
0: जी जी जी जी आई थिंक दिस इज
2: वन सॉन्ग है वो मेरे नैना सावन भादो
0: आरडी
2: बर्मन का
0: जी
2: उसका 4 मिलियन व्यू है
0: 4 मिलियन
2: वन सॉन्ग है
0: हो जाए अभी थोड़ा
2: हाँ
0: प्लीज प्लीज इफ यू डोंट माइंड हाँ
1: क्यों नहीं

0: 94.7 FM रेडियो सुरसंगम हर हफ्ते 20 घंटे सुनो मंडे टू फ्राइडे शाम 4 टू 5 कुलदीप सिंह विचार चर्चा शाम 8 टू 9 जितेंद्र पन्नू रेडियो सुरसंगम .ca फोन 403-585-0910 रेडियो सुरसंगम
1: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app.

0: ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਏਮੀ ਨੂੰ 403-617-2111 ਤੇ ਅਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 403-479-7007 ਤੇ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ।
1: कैनेडा विच रहंदिया इंश्योरेंस की बहुत अहमियत है। किसी भी तरह की इंश्योरेंस ले पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो। सुपर वीजा, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, आरईएसपी दिया वधिया सेवावां ले पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू। ए इंश्योरेंस ले नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन। होर जानकारी ले पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो।
2: सोने घर की निशानी होती है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदियां ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी का पता पुछन लग जान। ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंद की फ्लोरिंग का समान। फ्लोरिंग घर का होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन का प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग के डिजाइनर नाल भरिया है इन्हां दा शोरूम। अज ही इन्हां दे शोरूम ते पुजो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते। पासपोर्ट तों लैके हेडशॉट अते परिवार पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करते हैं। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जा आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करते हुए एक फोटो एक वार।
4: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
0: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
4: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
0: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
4: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्ट विंड ड्राइव,
0: दूजी लोकेशन 117-7770 एवेन्यू,
4: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड,
0: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर,
4: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
0: छेवी लोकेशन 400-45 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
4: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
0: 403-835। बाय बाय।
5: रेडियो सुर संगम 94.7 FM सुन रहे सारे श्रोतियां नूं कुलदीप सिंह वल्लों सत श्री अकाल जी। अज दिन वीरवार मई महीने की 28 तरीक सन 2026 हुण तो लैके 6 बजे तक मेरा ते आप जी का साथ रहेगा। अज दे इस प्रोग्राम विच असीं हमेशा मां खबरां ते चर्चा करांगे। 8 बजे एक विशेष गलबात पेश की जाएगी, उसके बारे भी जानकारी देवांगे आप जी नूं कि एक मीडिया चैनल द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां नाल की गई गलबात वो पेश की जाएगी रात 8 बजे ते 9 बजे जितेंद्र पन्नू जी नाल प्रोग्राम पेश किया जाएगा। ये साढ़े अज के बाकी रहिंदे प्रोग्राम ते उन्हां दा वेरवा। अज दे इस प्रोग्राम दे विच इस तो पहला के खबरां वल्लों चलीए हमेशा वांग मौसम की थोड़ी जी गलबात कर लईए। इस वेले कैलगरी शहर विच बदलवाई

0: या बाकी बेनिफिट्स ने वो ना बंद हो जाने से बाहर निकला।
1: ठीक है जी, ठीक है जी,
0: टाइम दसेगा जी।
1: ठीक है जी, मेहरबानी, कॉल करनी, धन्यवाद जी। सो इस मामले ते सियासत गरमाई है जी, ते तुसी भी अगर अपने विचार भी देना चाहते हो तो दे सकते हो। जिहड़े ऑनलाइन सानू सवाल दे जवाब आए ने वो जरा सांझे कर लिए जी। सवाल सुखमंदर सिंह कहिंदे ने जलंधर हुशियारपुर कपूरथला शहीद भगत सिंह नगर नवां शहर। रुपिंदर ढिल्लों लिखते ने सत श्री अकाल भाजी, लिखते ने जलंधर हुशियारपुर कपूरथला शहीद भगत सिंह नगर नवां शहर। ये आंसर दो रुपिंदर ढिल्लों होना दे फोन दे चार डिजिट 4275, सुखमंदर होना दे 2326। 403-902-1323 साढ़े स्टूडियो का नंबर है। तो जे तुसी इस सवाल का जवाब देना चाहते हो कि बेस्ट दुआब दे विच केड़े केड़े जिले ने, तो कॉल कर लो, तो असी तुहानू दो गिफ्ट एक एक गिफ्ट कार्ड एक स्रोते नू जिहड़ा है वह मदर इंडिया रेस्टोरेंट का देवांगे। एक गिफ्ट कार्ड मदर इंडिया रेस्टोरेंट दे, एक गिफ्ट कार्ड एक स्रोते नू, ते चार कुल जिहड़े ने अज दे प्रोग्राम विच देने ने। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से विच असी एक माहिराना राय पेश करनी है, जिस विच पंजाब दे कुछ मुद्दियां ते चर्चा एक सीनियर पत्रकार कर रहे ने, वह आप जी लिए पेश करांगे। मार्क कारनी की कह रहे ने, अमरीका दे विच न्यूयॉर्क दे बिजनेस लीडरां नाल गलबात करदे होए उन्होंने यह कहा कि स्ट्रोंग कैनेडा, अगर कैनेडा मजबूत होवेगा तो वह अमरीका नूं दोबारा महान बनाउण दे विच मदद करेगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये डोनाल्ड ट्रंप का स्लोगन सी। इस मुद्दे ते उन्होंने इलैक्शन जीतियां, तो प्राइम मिनिस्टर मार्क कारनी ने न्यूयॉर्क दे विच फाइनेंसर सगे कुछ होर बिजनेस आगू सी, जिथे उन्होंने कहा कि कैनेडा ते यूएसए नू एक नवी पार्टनरशिप शुरू करन दी लोड़ है, एक बाईलैटरल रिलेशनशिप जिहड़ा है वह दोबारा शुरू किया जाए, तो पुरानियां चीज़ां ते ना खड़े हो के एक नवे मजबूत प्लेटफार्म वल ध्यान दिता जाए, जो कि ताकतवर होवे, आजाद होवे, ते कैनेडा जिहड़ा है अमरीका नू ग्रेट बनाउण दे विच होर मदद करे। कारनी ने कहा कि यूएस प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दे जिहड़ियां शिफ्ट हैगियां ने ट्रेड दे विच, ते इहदे नाल दुनिया जिहड़ी है डिवाइडेड ते डेंजरस बन गई है, वंडी हुई ते खतरनाक बन गई है, ते कैनेडा वालियां नू फोकस करना चाहिए कि अपना ख्याल रखण, ते एक अपना जिहड़ा स्टेटस है एनर्जी सुपर पावर वजों उसनू वह बरकरार रखण, ते उस विच अगे वधण। सो इहदा मतलब ये वो कहिंदे कि इहदा मतलब ये नहीं कटना चाहिए कि यूएसए नालों असी तोड़ विछोड़ा करना चाहते हैं, बल्कि यूएसए दे नाल असी मिल के ही चलना चाहते हैं। तो यह भी उन्होंने कहा कि यूएसए वाले कनेडा दे उपर तेल, नैचुरल गैस, बिजली, एलूमिनियम, पोटाश, निकल, कॉपर ते होर बहुत सारिया इंडस्ट्रियल चीज़ां लई डिपेंडेंट ने, ते दोवें देशां इन्हां सैक्टर दे विच होर ज़्यादा व्यापार कर सकदियां ने। पर इन्हां सारियां चीज़ां दे जिन्हां दे मार्क कारनी ने नाम लए ने, इन्हां कल्ली कल्ली चीज़ां दा जिक्र करके डोनाल्ड ट्रंप बार बार पिछले साल कह चुके ने कि सानूं कनेडा कोलों कुछ नहीं चाहिए, तो 51वीं स्टेट बनाउण वाला तो गल वक्री रखदे ने कि वह चाहिए सानूं। सो कारनी ने यह नहीं कहा कि इन्हां जिहड़े आइडियाज़ उह रखदे ने ते इन्हां दा मूहरों की जवाब मिलेगा, पर वह कहिंदे ने कि गलबात असी कर रहे हैं ते असी आइडियाज़ नवे नवे दे रहे हैं। इधर कनेडा दे विच जो सरकार है इन्हां वल्लों कहा गया कि साडी गलबात अमरीका नाल भावें लगदा इस तरह पहली नज़रे कि नहीं किसे पासे लग रही, पर गलबात साडी लगातार चलदी जिहड़ी यूएसए नाल चल रही है। सो इन्हां दा जिहड़ा सिस्टम है जी यूएसए दे नाल कैनेडा दा, वह इस वेले कोई बहुता वधिया नहीं है, तो इस मुद्दे ते कनेडा वाले अपने आप नूं किसी पोजिशन ते लिजाण दी कोशिश

0: ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਡਸ਼ਾਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੋਰਟਰੇਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਕਸਲ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 403-947-0060 ਪਿਕਸਲ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਵਾਰ
1: रेडियो सुरसंगम 94.7 एफएम ते एक बार फिर ब्रेक तो बाद स्वागत है जी साडे कोल खबरां बहुत ने ते सवाल भी असी सांझा कीता होया अगर स्रोते होर जवाब देना चाहुंदे ने ते कॉल कर सकदे ने 403-902-1323 403-902-1323 सवाल के पंजाब दे बिस्त दुआब इलाके विच किहड़े किहड़े जिले हैगे ने बिस्त दुआब इलाके विच किहड़े किहड़े जिले ने कॉल करने लिए नंबर मैं फिर दस देवा 403-902-1323 403-902-1323 पंजाब के बिस्त दुआब विच किहड़े किहड़े जिले ने जी तो जल्दी जवाब दे दिओ जी सानू भेज दिओ ताकि असीं ड्राद भी तुहानू शामिल कर लईए तो प्रोग्राम विच क्योंकि असीं एक गलबात भी पेश करनी उस तो पहला पहला सवाल का जवाब भी देवांगे अज के जेतुआं का ऐलान भी करांगे तो नाल सही जो स्रोते जिन्होंने जवाब दिते होंगे सारे का नाम एक बार फिर रिपीट करांगे जी तो खबर से चर्चा जी है शुरू करते हैं फिर एक बार दसती है कि सोनिक इंश्योरेंस के मानस पहुजा होर के सहयोग नाल प्रोग्राम पहुँच रहा है अलबरटा विच ट्रकां की इंश्योरेंस के बेस्ट रेट लैण लई 587-832-1208 से संपर्क कर लो 587-832-1208 YYC होम केयर तो वीरपाल कौर ट्रट होर की कंपनी जी है जी घर में बजुर्गों की सांभ संभाल सेवावां दिंदी है तो फोन नंबर नोट कर लो 825-760-0983 पैसों की चिंता करने की लोड़ नहीं है बिल ये सीधा सरकार को भेजेंगे मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स जो कि बहुत वड्डी डीलरशिप है तो इन्हां कोल सैकड़े गड्डियां शोरूम के अंदर ही खड़िया होंदिया ने तो गुड डील भी बनानी है वधिया तुसीं सर्विस लेनी है तो गौरव शर्मा होरां नाल कॉन्टैक्ट कर लो 403-903-6757 403-903-6757 पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिद्धू तो लवप्रीत सिद्धू जो कि लाइफ इंश्योरेंस से सुपर वीजा इंश्योरेंस करते हैं फोन नंबर है 403-404-3500 403-404-3500 मदर इंडिया रेस्टोरेंट है जी जिथे कि देसी घोबे दलां सब्जियां बनाईयां जांदियां ने 24 घंटे सत्ते दिन खुलदा मदर इंडिया रेस्टोरेंट ते इत्थे तुसीं किसे वक्त भी ऑर्डर कर सकते हो जाके परिवार नाल बैठ के खा सकते हो मदर इंडिया रेस्टोरेंट सिटीस्केप दे विच मदर इंडिया रेस्टोरेंट फोन नंबर 403-464-6666 ते पिक्सल फोटो स्टूडियो जिथे सिर्फ $7 दे विच पासपोर्ट फोटो फैमिली फोटो बिजनेस पोर्ट्रेट सब कुछ जरा करवाया जाएगा करवा सकते हो तुम बहुत जायज रेट के पिक्सल फोटो स्टूडियो सवाना बाजार नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कनेडा तो एक वड्डी खबर सामने आ रही है कि साउथ एशियन खास करके पंजाबी भाईचारा इन जनरल तो सिख भाईचारा इन पर्टिकुलर इन्हों को की जा रही एक्सटॉर्शन जबरी वसूली फरौतियां लिया जा रही ने इस मामले में अदालत विच एक हैरानीजनक खुलासा होया एक डिपोर्टेशन हीयरिंग सी किसी की चल रही तो एडमिंटन पुलिस के एक जांच अधिकारी ने इनवैसटीगेटिंग ऑफिसर ने दसिया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग वालों बीते समय विच ब्रिटिश कोलंबिया के एप्सफोर्ड के पुलिस स्टेशन एक सीधी चिट्ठी भेजी गई इस चिट्ठी विच गैंग ने दावा किया कि उन्होंने इस अतवादी संगठन के कोल कनेडा विच गोलीबारी दीआं वारदातां नूं अंजाम देण लई हजार तो वध शूटर ने जी भाव निशानेबाज कह लो जां गोलियां चलाउण वाले हथियारां वाले हजार तो वध ने चिट्ठी विच कहिंदे लिखिया गया कि कनेडा विच हर एक बिजनेसमैन नूं फरौती देनी पैणी है ते पुलिस जिहड़ी है जी इस मामले च कहिंदी कि कनेडा दे विच जो स्टूडेंट आए ने जो वर्क परमिट वाले उन्होंने थोड़ा जिहा पैसों का लालच दे के इहो जिहा काम दे विच वसा लिया जाता है तो यह गैंग वट्सएप के राही जिहड़ा ज़्यादा करके कारोबारियों नूं धमकियां दिंदा है तो जदों वह नहीं दिंदे जां गल ते गौर नहीं करते तो फिर उन्होंने घरां ते दुकानां ते गोलियां चलाईयां जांदियां ने CBSA दे नाल रल के कनेडा विच पुलिस जिहड़ी है टास्क फोर्स बना के इस नूं नजिठण लई सख्त कदम चुक रही है कनेडा सरकार ने बिश्नोई गैंग नूं अतवादी संगठन भी ऐलान दिता होया तो जिन्हें शामिल ने जी इहदे विच जिहड़े फड़े जांदे ने उन्हां नूं डिपोर्ट किया जा रहा सो ये

0: गल नहीं बन रही। क्लॉड लम्यूक सबका कनेडियन ते चार बार दे स्टैनली कप जेतू उन्हां दी 60 साल की उम्र दे विच मौत हो गई है जी। क्यूबेक दे विच जन्मे लम्यूक एनएचएल दे विच मॉन्ट्रियल कनेडियन दे नाल 1983 विच खेडे ते 1986 दे विच स्टैनली कप जितया। उस तों बाद न्यू जर्सी डेवल्स दे नाल 1995 ते 2000 विच ते कोलोराडो एवलैंच दे नाल 1996 दे विच उन्हां ने एनएचएल दी स्टैनली कप ट्रॉफी जीती सी। लम्यूक काफ़ी मन्ने पर मन्ने प्लेयर सी ते इस वेले यह कह जा रहा कि उन्होंने मौत हुई है कि किस कारण हुई है यदा पता नहीं है, लेकिन कनेडा दे विच इस महान हॉकी खिडारी नू जिहड़ा है वह याद किया जा रहा। तो शौक दे विच ने जिहड़े कुछ हॉकी दे फैन ने एक कन्फ्यूज ना किया जाए एनएचएल दे विच क्लॉड लम्यूक की मौत हुई है ते जो कि जिन्हों का कैरियर मॉन्ट्रियल कनेडियंस न्यू जर्सी डेवल्स कोलोराडो एवलैंच फीनिक्स वगैरह ना रहा डैलस स्टार सैन होजे नाल भी पर जिहड़े मेरियो लम्यूक नाल उन्होंने कन्फ्यूज ना किया जाए वह भी बहुत ग्रेट प्लेयर ने वह कायम दायम ने 60 साल उन्होंने उम्र है तो उन्होंने सारा जिहड़ा पिट्सबर्ग पेंगुइन्स दे नाल खेले ने बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। कुछ होर खबरां जी जिस विच नॉर्थ वेस्ट कैलगरी दे एक हादसे दे विच इक्को ही गड्डी सी ते इस विच कार नू अग लगी रात दे 2 बजे दे आसपास निसान अल्टिमा गड्डी सी ते पुलिस ने कहा कि सड़क तों एक ग्रास वल नू घाह वल नू ये गड्डी निकल गई ते जिथे वो एक कॉन्क्रीट बैरीयर दे नाल जा लगी ते इस नाल एक गड्डी हवा दे विच उड़ती जी गई तो ड्राइवर जड़ा सी बिचों दी बाहर गया तो फिर गड्डी जड़ी है छत दे भार पुठी हो गई तो इस गड्डी नू अग लग गई। ड्राइवर एजेक्ट हो गया शायद उसने बैल्ट नहीं लाई होगी या इहो जी गल होगी तो 35 सालों का जिहड़ा ड्राइवर सी वह लागियों ही मिलिया पर उसनू मौके ते ही मृतक ऐलान दिता गया। बंगलादेश दे विच एक मझ जो कि अलबाइनो सी जिमें बूरी ज भूरी नसल दियां मझां हुंदियां ने जी पंजाब दे विच वह होर हुंदियां ने यह एक किस्म की यह कह लो कि जिमें किस्मां हुंदियां ने इंसानां विच भी अलबाइनो इंसान हुंदे ने यह उस तरह की मझ है जिसनू ईद के मौके पर ज़िबा करने लई कुरबानी देने लई जिहड़ा सी तैयार किया जा रहा सी। बहुत बड़े साइज की यह मझ जिसका भार 7 क्विंटल सी तकरीबन 1,550 पाउंड इसनों पहला एक रिचुअल स्लॉटर के लिए वेचा गया फिर सरकार इस मामले के अगे आ गई तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर ने ऑर्डर जारी किया कि इसनों माफ़ कर दो पैसे खरीददार नूं वापस कर दिते गए तो इस मझ नूं नैशनल जू जिहड़ा है ढाका दे विच चिड़ियाघर है उत्थे पछा दिता गया तो इस मझ का नाम निकनेम जिहड़ा है वह डोनल्ड ट्रंप रखा गया क्योंकि इस दे सुनहरे वाल सन इस दे मत्थे ते होर चीज़ां करके उसका नाम रखा गया। खैर इस नूं बहुत लाइटली लिया जा रहा ते लेकिन इस वल के जिहड़ी अलबाइनो बफलोज ने बंगलादेश विच बहुत घट हुंदियां ने जिवें कि पंजाब विच भी हुंदा है काले रंग दियां जां भूरी नसल दियां जां बूरी नसल दियां जिहड़ियां मझां हुंदियां ने वह हुंदियां ने वह अलग चीज़ है इस तों यह अलबाइनो नूं उस नाल कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। रेडियो सुरसंगम 94.7 FM ते जी हुण फिर गलबात असी शुरू करिए जो कि सीनियर पत्रकार दविंदर पाल होरी पंजाब के हालातों के बारे चर्चा कर रहे हैं तो आओ सुनते हैं उम्मीद करते हैं कि यह गलबात जी है तुसी जरूर पसंद करोगे। ये हर रोज़ असी वक्रे वक्रे मौके पर कुछ ना कुछ पेश करते हैं तो दस दी कि रात 8 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नाल एक लंबी चौड़ी इंटरव्यू जी है पेश की जाएगी जो एक होर मीडिया अदारे वालों धनवाद सहित आप जी साझी की जा रही है आओ सुनते हैं जी गलबात अज की।
1: जेठ हाड़ के तपते दुपहरिया के वांग पंजाब की सियासत भी बहुत ज्यादा तबण लगी है तुखण लगी है। दोस्तों पिछले 24 घंटिया के वापरिया 2 वड्डियां घटनावां ने यह डूंघे संकेत दिते ने कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल दियां मुश्किलां वध सकदियां ने पंजाब पुलिस उन्हां दे खिलाफ वड्डी कार्रवाई कर सकती है जां सरकार